0: ਬਾਲਾਣੀ ਰੋਡ ਮਹਿਰਾਪੁਰ ਅਸਾਂ ਵਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਪਾਵਾ ਐਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਢਬ 4, 6, 9 ਐਂ 12 ਇੰਚ ਮੇ ਪਲੇਨ ਐਂ ਕਾਲਮ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਆਹਨ ਫੌਜੀ ਬਾਇਰਨ ਲਾਇ ਖਸੂਸੀ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਬਤੇ ਲਾਇ ਫੌਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ 0301-54-31-456 ਐਂ ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-16-23-793
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज

0: हमेशह रंग रौनकूं ऐं सरखेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मोहम्मद उमर गोरी 03151557024
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर।

0: सेंटर नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर
2: 03005569
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: आई मोहम्मद उमर गोरी 01315724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: उम्मीद के दिए जलते हैं।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836
2: मोहम्मद उमेर गोरी 03151575724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे
3: देवत में कैप्टन हमजा शहीद थी वयो बे पासे बलूचिस्तान में रदुल फितना टे दौरान कंबीला ए आसिमाबाद में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारजी वया केतरा ही था तबाह सदर आसिफ जरदारी पारा शहीद कैप्टन हमजा अकरम के भेटा पेश सदर चयो त कौम बहादुर पुटन के कुर्बानी की कर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया में कें एक हमलो टिन्हीं मुल्क समझो वो टिन्हीं मुल्क तारीखी मका गडियल दिफाई मुआदो कर छो सऊदी अरब के शहर मका मुकरम में टिन्हीं मुल्क सरबराह इजलास में मुआदे से सयू कई हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मके दिफाई मुआदे से सयू क्यों। परदेही वजारत के तर्जमान है मुआदे तहत टई मुल्क दिफाई सहकार के हथी डींदा मुआदे तहत कें भी एक मुल्क से हमलो टिन्हीं मुल्क हमलो तस्वुर वो मुआदे जो मकसद टिन्हीं मुल्क के दिफाई निजाम के मजबूत बनाण है। वजीर आजम पारा मके में गडियल दिफाई मुआदो टिन भायर इस्लामी मुल्क विच में दोस्ती अमुन ए सलामती के गडियल अजम जो इजहार करार शहबाज शरीफ चवा है फील्ड मार्शल के अणथक मेहनत यो अजीम मकसद पूरो करण में अहम किरदार अदा कयो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चवा है गडियल दिफाई मुआदो सिक्योरिटी ए दिफाई सहकार के अगते वधाण में मददगार साबित थींदो गडियल मनसूबन के हथी डेण दहशतगर्दी के खात्मे में पिण मदद मिली। सऊदी परदेही वजीर फैसल बिन फरहान भी चया है सऊदी पाकिस्तान ए तुर्किया जो दिफाई मुआदो टिन्हीं मुल्क की तरक्की ए खुशहाली जो सबब बणजंदो मुआदे से इलाकई अमुन के हथी मिली। ईरान जंग जारी रखण की पोजिशन में ना है अपना हरमुज वे जल्द खुली वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चया है ईरान वट मुआदे का सवाय बो को गस न है। ईरानी सदर मसूद पज़िशान है ईरान पैं मौकफ ता पोते न हटन जंग बदर गाल जरिए हक हासिल कर चाहन था। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के शहर मकाबाद मदीने पहुंची वो पाकिस्तानी वक्त से गड मस्जिद नबवी में हाजिर भरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाजुल जना में नफिल पढ़ी मुल्क कौम ए उम्मत लाए खुसूसी दुआओं भी घुरियं। शहबाज शरीफ रोजा रसूल ते हाजिरी भरे जियारत की सआदत भी हासिल कई।

0: सेसगंज में मुबैना तौर भाव गोलियों हणी भाव के जख्मी कर छो गोली लगण सबब जख्मी थियल नाए क्लास जो शागिर्द नवाब शाह मुंतकिल गोठ अलीगंज शहर में नाए क्लास जो शागिर्द अहमद रजा शहर गोली लगण सबब जख्मी थो पुलिस मूजिब मालूम थो है खेस भाव गोली हणी खेस जख्मी है जांच जारी है। तलार वेझो गोठ में पानी खोद खिलाफ गोठान जो मुजाहरों ए धरणो गोठ करम खान दागराणी में बिन महीनों का वाटर सप्लाई बंद जन खिलाफ रहवासी रोडन ते निकरी आया गोठान औरतन समेत हैदराबाद रोड ते टायर साड़े धरणो आयो रहवासियों जो चवण है बिन महीनों का गोठ करम खान दागराणी में वाटर सप्लाई जो पानी बोसपुर वेझो बीएस फीडर के लगल घारो बंद न थो सवें एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ गोठ मोहम्मद अली ओगाई वटा बीएस फीडर के 100 फुट जो घारो पयो पानी इलाके जे केतरन ही गोठन में दाखिल थियण लगो रहवासी परेशानियों जो शिकार आपाशी खाते पारा घारो बंद करण जी कोशिशों जारी। मुल्क के मथा इलाकन में बरसात बाद सिंधु दरिया में पानी वधन लगो गुडू बैराज से एक भेरों बीहर विचोली दर्जे वाली बोट डिक्लेयर गुडू बैराज वट मथाओं वेकरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया सखर बैराज वट पानी की सतह में विवाद थे लगी मथाओं 1,69,000 क्यूसिक कोटली बैराज में भी पानी वधन लगो मथाओं वेकरो 1,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कोटली बैराज हेठाओं वेकरो 1,42,000 क्यूसिक
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0302-018-00003
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस سم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 03013992836
10: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: वित्तीय जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: जा रंग रौनकू सरखेज़ी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याप वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: रिपोर्ट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी। 03195570724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाँ नहीं अचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
6: आ अंगन ई दू कयो गदी दी गुजारूंगा السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
4: ائی محمد عمر گوری 03191558724
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: Digital. मीर रजा के मौत जो कारण मालूम करण लाए कब्रकुशाई जो अमल जारी। डॉक्टर्स की टीम कब्रिस्तान में मौजूद मरहूम के जिसम जहा जुजा वी जांच लाए लेबोरेटरी मोकलिया वा। मीर रजा जहा वारिस वकील भी कब्रिस्तान में मौजूद, हतमी रिपोर्ट बाद जारी कई वेंदी। सिंधु दरिया में चाड़ बावजूद सूबे में पानी की खोट बरकरार। मुख्तलिफ़ शहर में आबादगार जहा पानी खोट खिलाफ मुजाहरा। शादाद कोर्ट में सैफुल्ला मंसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा खारिज। राइट माइनर के आबादगारन जो सड़ियल बेजारो खणी एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान की जमाली रोड वारी पुल ते धरणो। फसल बचाने लाए पानी देण जो मुतालबो। मोरो भरसा नौजवान औरत मुबैना तौर ते गोलियों हणी कतल। गोठ जंगू खान लगारिये में 18 सालन की नारिये के मुबैना तौर अगवाबाद वापसी ते कतल कयो वयो। मकतूल औरत के वालिद जमाल लगारी चयो आहे त कुछ वक्त पहिरियां वसीम धीए के अगवा करे वयो हो। पाक किताब ते धीए वापस डिनी वई। अज सुबुह वसीम अबड़ो हथियार बंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदर दाखिल थी धीए के पिस्टल जा फायर करे कतल कयो आहे। पुलिस इतला बावजूद कार्रवाई नाहे कई। इंसाफ कयो वञे। 88 मोरिय मां मुबैना तौर पीउ जे ज़ुल्मन खां घरां निकतल ब भेनर अदालत में पेश। अदालत ॿिन्ही छोकरियुनि जो बयान रिकॉर्ड करण बाद खेनि माइट उस्ताद लियाकत विरोही हवाले करे छॾियो। ॿिन्ही भेनरुनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त पीउ जे ज़ुल्मन खां तंग थी माइटनि वटि पनाह वरिती आहे। तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। तलार वेझो ॻोठ में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ॻोठ करम खान दलवाणीअ में 2 महीननि खां वाटर सप्लाई बंदि हुजण ख़िलाफ़ रहवासियुनि रोडनि ते निकिरी आया। ॻोठाणनि औरत समेत हैदराबाद रोड ते आयो। रहवासियुनि जो चवण आहे त 2 महीननि खां ॻोठ करम खान दलवाणी में वाटर सप्लाई जो पाणी बंदि आहे। घंबट में ज़राइत खाते जे आफ़ीसर जो घर मां लाश मिलण जो केस दाख़िल। ज़राइत खाते जे आफ़ीसर ज़ाहिद भट्टी जो क़तल केस संदसि पुट आसिफ़ भट्टी जी फरियाद ते दाख़िल कयो वियो। केस में मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा मुलाज़िम दानिश शेख, संदसि ज़ाल ऐनी राशिद ऐं मलंग शेख नामज़द। फरियादी जो चवण आहे त मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा शेख मिल्कियत जे मामले ते मुड़ सां नाराज़ रहंदी हुई। वालिद 4 अगस्त ते गुम थी वियो। वेगी माउ खां पुछंदो रहियोसि पर तसली बख़्श जवाब न मिलियो। गौसपुर वेझो बीएस फीडर के लगल घारो बंद न थियो। सवें एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ ॻोठ मोहम्मद लियोगाई वटां बीएस फीडर के 100 फुट जो घारो पयो। पाणी इलाइक़े जे केतिरनि ई ॻोठनि में दाख़िल थियण लॻो। रहवासी परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। आपाशी खाते पारां घारो बंद करण जूं कोशिशूं जारी। ऐं मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बरसातनि बाद सिंधु दरिया में पाणी वधण लॻो। गुडू बैराज ते हिकु भेरो 20 विचोले दर्जे वारी बोट डिक्लेयर। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह में वाध थियण लॻी। मथां 1,69,000 क्यूसिक थी वियो। कोठरी बैराज में बि पाणी वधण लॻो। मथां वेकिरो 1,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोठरी बैराज जो हेठां वेकिरो 1,42,000 क्यूसिक थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
3: आशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
4: जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

दुआओं के समान गैर चाहतों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जगता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक जहाँ से तार तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सपोर्ट हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बिल आलमीन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़गाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होता है, प्रोग्राम में आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो म्यूजिक कलेक्शन के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जिक्र भी होगा। तो अगर आप भी खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को हमेशा अपने पास लॉक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा कि चाहे वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए ये प्रोडक्ट जनाब अब भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि वाकई मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कब लगाने हैं, ये बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी आगे सिद्रा के साथ मौजूद है। हाँ जी भाई, आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है ये बताएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल भी बताएंगे। सो डियर लिसनर्स अंदर की हालत उन कैसे है आपकी हालत उन, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकूल मूड के साथ सुपकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो यहाँ पर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मारी ली। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर ये जो 2 घंटे होंगे इनमें आप लोगों का बहुत ज्यादा वाला सर खाऊंगे। चलें जी, तो सर खाने से बात याद आ गई, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन ही लिए तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाने का काम करती भाई ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा कसीदा जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है और हम कसीदा सुनेंगे, उसके बाद जैसे ही हम वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

और इसी के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताऊंगी भी मैं ओके जी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो. अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों के जहनों में हो कि भाई हाँ जी हमने क्या चीज परचेज करनी है. और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, बहुत अच्छे से जानिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लोगों को बताया जा रहा है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को इतना जबरदस्त सा निखार मिलता है कि आप खुद ही कहते हैं भाई ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई जादुई निखार तो नहीं है, क्योंकि इतना जादुई प्रोडक्ट ही वाकई इतना मेडिकेटेड फार्मूला है और उसके अलावा इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ही प्रोडक्ट पक डाढ़ो महंगो होंगे, पर कोई महंगो ना है ना कि तमाम बिल्कुल अफोर्ड करे सको था. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तमाम जे हर स्किन ते सूट करने वालों प्रोडक्ट आए, तमाम सुठी क्वालिटी, तमाम प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आए. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका भाई तैयार थियल है वाइटमिन ई बीड्स, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन, अल्फारबुटीन, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजों एड थियल आहिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर. तमाम चवंदा तो बाबा ये नाला बुधी कर लगे तो हा वाकई अमीरन वारो प्रोडक्ट होंगे बिल्कुल ईअं ही आहे. एडियो जबरदस्त जबरदस्त चीजों ने जे अंदर एड थियल आहिन. अगर तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या फिर तमाम इस्तेमाल करण चाहियो था तो तमाम बिल्कुल इस्तेमाल कजो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेट फार्मूलो आहे, हिन खे डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार कयो वयो आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हां खे ख़बर पवंदी बाबा वाकई तव्हां का शइ लॻायो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे, सो इन खे तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु करे सघो था. उन खां अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या हमारी ऑल स्किन टाइप के लिए है, हमारी स्किन तो सेंसिटिव है तो क्या हम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन इस तरह किया गया है, इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो मेडिकेटेड फार्मूला तो आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर लगा सकते हैं. और जनाब इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है. एक बहुत ही मयारी ब्यूटी फार्मूला है, ये आपके जल्द को नमी फराहम करता है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद देता है. और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो है ना बेरोनकी कम कर देता है, चेहरा ज्यादा साफ और रोशन नजर आना स्टार्ट हो जाता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी सारी चीजें हैं वो आप लोगों की स्किन को फ्रेश एहसास देने के लिए है और आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए है. तो रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती में चमक फराहम करेगा. तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम लगाइएगा सोने से पहले. लगाने से पहले एक और चीज है जो आपने यूज करनी है, वो है डी स्किन फेस वॉश. बिल्कुल जनाब, डी स्किन फेस वॉश को कैसे भूल सकते हैं. तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश की भी अगर बात आती है तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. अब आप ये बोलेंगे कि ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सा चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे फायदा ये होता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है. तो ये इतने सारे फायदे आप को मिल सकते हैं जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये कि आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से नाम लीजिए. और ये जो आप बोलते हैं ना डी एस नहीं बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी आप लगाइए और साथ में आप स्किन को याद रखिए कि हाँ जी आपकी स्किन तो बिल्कुल वैसे ही, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश. और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स मौजूद होने चाहिए जिन नंबर्स के ऊपर आप रابطہ कर सकें इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए. कोई मालूमात लेना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए तो आपने डायल करना है 03-12-50-25-907. और इसके अलावा अगर दूसरा नंबर आप डायल करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर है 03-2-7-3-8-4-3-0-9. अब ऐसा है कि मैं अभी मुझे ये ख्याल आया जब आपको मैंने नंबर बताया तो महर इरफान सियाल साहब तो वापस आ चुके हैं उमरा से, तो मैं सोच रही थी कि उनका नंबर दोबारा से अनाउंस कर दें ये पूछना पड़ेगा मुझे. तो अभी तो आप ये नंबर जो है वो डायल कीजिए और उसके साथ साथ मुझे जरा ये बताइए आज जो हमने एक थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है आप लोगों से जिसका आप लोग मुझे जवाब देने वाले हैं कि कुछ लोगों के खानदान में ना ये चीज होती है कि वो अपने खानदान से बाहर शादियां नहीं करते, समझ रहे हैं. तो मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, आप लोगों ने भाई आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप खानदान के अंदर शादी कर सकते हैं, तो
आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप पुप्पो का घर सिलेक्ट करेंगे या मामू का घर सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों ऑप्शन में बताइए जरा बेस्ट क्या है, किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, वो मैं देखूंगी। और ये हमारी एक लिसनर है, उनके तरफ से ये टॉपिक मुझे सजेस्ट हुआ है, तो उन्होंने जानना है कि भाई लिसनर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। तो देखें आप क्या कह रहे हैं। और बाबा शादी शौक जी, आप खर्च करण खाना रो क्यों मुखे, असांजे फैमिली मेड़ो को सिस्टम नाए अल्हम्दुलिल्लाह। समझा। ओके, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जरा।

ओके जी, हमारे साथ ही यहाँ पर हैप्पी कीती आरजे। ऐसा लगता है आई थिंक मामू का घर बेहतर है पर पप्पो का घर भी कम नहीं, वो भी अच्छी है। ये टॉपिक आंसर यानी आपने तो फिर मामू को सिलेक्ट किया ना, फिर ठीक है इसको हम जरा लॉ कर देते हैं। ओके जी, हमारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद, कहती है हेलो स्वीटी, वेलकम टू शो, हेलो टू यू प्यारी। और उन खां अलावा सादिया तव गाने की फरमाइश कई, मैं कोशिश क्या तवो गानों हलाइंदी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, ब्लेड सोनो खां लाशारी मीरपुर खास से कहते हैं सुन रहे हैं बाजी सिदरा वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है। ओके जी, एस एन आर बाणी क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अलैहि सलामत है। ओ माय फेवरेट आरजे बेटा मुस्कान, कैसी हैं माँ सबा ठीक, तहां बुधा की आयो मजे में। अखलाक भाई कहते हैं अंसर मामा मामी जिंदाबाद, ओ जियो करे से। ओके जी, किशोर भाई आ चुके हैं, सलाम अद्दा स्मार्ट हाजरा, कैसा आयो, खुश आयो, सफा मस्त मजे में, तो में के मुझे ओके जी। स्मार्टू गोपां कहते हैं टॉपिक आंसर, मेरे ख्याल में शादी के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि रिश्ता पुप्पो के घर में है या मामों के घर में, शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसलिए रिश्तेदारी से ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला इंसान समझदार, नेक, जिम्मेदार और हमारे खानदान के लिए मुनासिब हो। रिश्ता कहीं से भी हो सकता है लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, यही मेरी नजर में एक समझदार फैसला है, समझदारी वाला फैसला है। ओके, और मैंने एक चीज नोटिस करी है, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है ना, हमारे जो घर के बड़े हैं ना, उन्होंने अपने खानदान में रिश्ते कराकर कितनी ही तल्ख चीजें मतलब जो है ना वो देख ली हैं, हासिल कर ली, अपने बच्चों को तकलीफें दे दी हैं, लेकिन फिर भी उनका ये एक मानना होता है कि भाई शादी करनी है तो अपनों में करनी है। हाँ जी, पहले जो सबक सीखे वो कम नहीं थे, आगे भी करनी है, अपनों में करनी है। ये चीज मुझे लगता है कि हर किसी के खानदान के अंदर पाई जाती है। ऐसा है कि आजकल जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों में ये चीज अवेयरनेस जो है ना वो आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं जो कि इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो तो हो, लेकिन शादी अपनों में करनी चाहिए। कीजिए भाई कीजिए, और इसके अलावा आप पोस्ट को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना खां भी रोकियो न मुखे।

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, भलो गानो एंजॉय कयो पया। और चाचा खालिद कहते हैं दोनों घर सही नहीं है, बाहर करें शादी। मैंने अपनी बेटी और दोनों अब बेटों की शादी बाहर की है, अपनों में तजुर्बा नाकाम रहा बेटा से दो हाणे सुतल सूर न जगाए नी यो टॉपिक आंसर दिसो दिसो पहिरां अगर इहो मतलब आहे तय थियल त पहिरां जेको असांखे टेस्ट करणो आहे उहो पंहिंजनि में करणो आहे, पोइ भलो सबक हासिल कंदासीं पोइ ॿाहिरि वेंदासीं। ऐं सुठो अगरि ईअं हुजे त तव्हां स्टार्टिंग में ई जेको आहे न सुठो कोई फ़ैसिलो वठो, ऐं तव्हांखे इहा चीज़ ख़बर हुजणु घुरिजे त बाबा शादी जे लाइ जेको इंसान सुठो हुजणु घुरिजे उहो पंहिंजनि मां आहे या फिर किथां ॿाहिरि आहे, इन चीज़ मां तव्हांखे फ़र्क़ु न पवणु घुरिजे। खैर असांजी ॻाल्हियुनि खे त इहो चयो वेंदो आहे बाबा ॿार आयो न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर, इहे वॾनि जा फ़ैसिला आहिनि वॾनि ते छॾे ॾियो, बिल्कुलु जी तव्हांजा फ़ैसिला तव्हां ते छॾे ॾिनासीं। ऐं इन खां अलावा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, इहा त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी सघो था न। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदा। ये जब भी मैं कोई शादी वाला टॉपिक रखती हूँ ना तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि गाने भी शादी वाले होने चाहिए।
1: So, देखे शादी जो इंतजार जो आपे करार, ओहो, हत

0: हजार खान जतोई हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह गुड शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निगड़ी कहते हैं कि हम दोनों जवाब सुनेंगे बस। हाँ जी ठीक है, अच्छा मस्त आइडिया है। और उनका अलावा हमारे साथ ही सादिया कहती हैं टॉपिक ये अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ कहते हैं टॉपिक आहिंद भाई सही कौन पर वरी भी असा मामू जी घर के सिलेक्ट कंदासी। ओह पुप्पो को देखे अभी तक वोट नहीं मिला एक भी नहीं।
1: हाय
0: ये बहुत बुरा है।
1: मस्त मौज मचे थी मटन सा मस्त मौज मचे।
0: ओके जी अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई को। और हाले सुल्तान हमारे साथ हैं, हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आप बताएं हाले सुल्तान आप कैसी हैं? कहते हैं हेलो सिद्रा वो सॉन्ग भी मजे के होते हैं जो समझ नहीं आते अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा बट मजे का है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हाले सुल्तान का नाम देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कोई ड्रामा है जैसे आजकल ड्रामों के एड नहीं आते। देखिए आज रात 8 बजे हाले सुल्तान बिल्कुल वैसे ही

मैं बाबा अला बना डे पुफिन का असा पहिरियां ई इहे जेके न सटियल आहियूं इन्हनि जा सो खैर इन ॻाल्हि खे थोरो डिस्क्लोज अच्छा मैं जो है ना एक बात सोच रही थी कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर जवाब दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा ठीक है और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप जो है ना नंबर आपको बता रही हूं उनके ऊपर रब्ता किया तो बिल्कुल नंबर्स के ऊपर रब्ता करिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए और जनाब इस्तेमाल करते जाइए क्योंकि खूबसूरती यहीं से स्टार्ट होगी कि आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करना शुरू करें ओके पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें मेरे बिना कहे क्यों इतना कहलवाते हैं

अच्छा सुफियान अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन क्रीम वालों का लोशन अवेलेबल, डी स्किन का नहीं लेकिन व्हाइटिश का लोशन मौजूद है, तो व्हाइटिश का लोशन ले सकते हैं।

हमें ही नहीं स्मार्ट हो गोपांग, ऐसी कोई बात नहीं है. किशोर भाई वो यही हमारे आसपास हैं, बस ढूंढिए आप खुद, मैं नहीं बताऊंगी.

किसी की सोच पे डिपेंड करता है, आप समझ गई ना, मैं थोड़ा थोड़ा समझी। अगर पसंद ना करें तो फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, तो फिर इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़ेगा, ये लग रहा है मुझे।

अहद जरवार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। सादिया कहती है मैं समझ गई, अच्छा है। और दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं स्वीटी कैसी?

जी जनाब, क्या बात है, बिल्कुल जी, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये ना एक चीज है भाई, सदियों से ये चीज चलती आ रही है, हमें लग रहा है कि हम जो है ना, यानी कि हम जब बुजुर्ग बनेंगे तो इस रिवाज को, रस्म को जरा साइड पे रखेंगे, वरना जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनके लिए भी सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो पांजा है। पांजा हिकड़ी जेका ये कहावत आए बाबा त पांजा किए चवंदा आहिनि, पांजा मारे शाम में छलींदा आहिनि, अलाए कीअं, मतलब ये हिकड़ी कहावत आहे, मूं ॿुधी आहे, तव्हां हिनखे जरा मतलब सही कयो, या कहावत कीअं आहे। मां हिते वठां थी जनाब न्यूज़ ब्रेक, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, मोटी जल्दी तव्हां अचूं था, तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is...
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
5: सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद वापस ले रवानो. वजीर आजम के मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो. वजीर आजम डे रवानगी का पहिरीं वक्त सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया. शहबाज़ शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई. पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे रुकनी दिफ़ाई मुआदे खे मुल्की तरक़ीअ जे अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो. मके दिफ़ाई मुआदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह. बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे. सिक्योरिटी फोर्सिस जो के पी के में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन 70 दहशतगर्द मारिजी विया. फायरिंग जी ॾेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो. ISPR मूजिब दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो. कार्रवाई दौरान 70 दहशतगर्द मारिजी विया. फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकरम शहीद थी वियो. सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकरम खे भेटा पेश. सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे. शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे. दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो.
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोज़ ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर।

ओके जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो हमने पहले आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के बारे में बताया। तो फिलहाल आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाएंगे और इसी के साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बताएंगे कि भाई एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तो सवाल कुछ यूं है कि आप मुझे बताएंगे कि शादी जो है, यानी कि कुछ लोगों के खानदानों में ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ अपने फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं, तो उनको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। तो उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप फोगे घर में शादी कर लें या तो आप मामू के घर में शादी कर लें। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होगा? और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का जो सिलसिला है ना, वो यहाँ से जरा स्टार्ट होता है कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है। ओके जी, सो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ व्हाइट एश ब्यूटी सोप आपको मिल रहा है, व्हाइट एश आपको फेस वॉश मिल रहा है, व्हाइट एश लवली क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब है। उसके अलावा बहुत सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि व्हाइट एश का आपको लोशन मिल रहा है, व्हाइट एश का हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर पाए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट तो हमारे हिसाब वाला प्रोडक्ट है, इसे तो हमें लगाना ही चाहिए, तो बिल्कुल आप उसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बात यहां से स्टार्ट होती है कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप मार्केट जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या परचेज करने जा रहे हैं और आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है, मिल्क है, और इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिलती है और साथ ही साथ आप हमेशा खूबसूरत बने रहते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। आपकी जिल्द को नरम मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं रोजाना तो आपके चेहरे की जो खुश्की है, दाग धब्बे हैं, बेरोनकी है, ये तमाम चीजें कम हो जाना स्टार्ट हो जाती है, जबकि आपकी जिल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस हो जाती है। और जनाब व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम में जनाब आप जानते हैं कि खास और खसूसी अज्जा मौजूद हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है, आपकी हिफाजत करेंगे स्किन की और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करेंगे। तो रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और आप अपने आप को देखकर कहेंगे कि आए हाय ऐसे वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप मिल रहा है और व्हाइट एश फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फेस वॉश लगाते हैं, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग अगर मैं पूछती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि बाजी असां त साबुण हणंदा आहियूं, बाजी असां त फेस वॉश हणंदा आहियूं, त हिन दफ़े बाजी तव्हां चलाए ॿई चीज़ूं खणी आई आहे तव्हांखे का बि यानी कि बहानेबाज़ी न करणी पवंदी। तव्हां साबुण हणंदा आहियो त तव्हां व्हाइट एश ब्यूटी सोप लॻाईंदा, तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त व्हाइट एश फेस वॉश लॻाईंदा। बिल्कुल जी बच्चों, हर तरह से आपको जो है ना वो घेर लिया है, कहीं से भी जाने नहीं देंगे। और अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी, इतने अच्छे मार्केट में जो है ना वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इनसे आपको फायदा उठाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि भाई आप लाजमी सारे लोग ही इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई हम नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, तो आपके लिए व्हाइट एश लवली क्रीम मौजूद है और उसकी क्या खास बातें हैं वो बताती हूँ। लेकिन साथ साथ आप व्हाइट एश का फेस वॉश और सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एश का फेस वॉश अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये विटामिन सी से तैयार किया गया है इसको, और इसके
अंदर जो है ना विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी मौजूद है और ये इतना ग्लोइंग फेस वॉश आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए है। ये बहुत ही क्रीमी सा फेस वॉश है। जब आप व्हाइट एज फेस वॉश का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे आज देखा जाए तो फेसबुक पर एड जो लगाया है वो भी व्हाइट एज के फेस वॉश का ही है। आप देखकर समझ गए होंगे कि ये कितना अच्छा और कितना जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को भी खूबसूरती मिले, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो देन आपके पास नंबर मौजूद है 03 12 50 25 907 और दूसरा नंबर है 03 23 27 38 45 09 0 23 27 38 43 09। ये दोनों नंबर्स आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी वाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। भाई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तभी तो आपके लिए आसानी होगी ना कि बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे वहां से आप नाम लेकर तलब करेंगे। तो नाम लेकर तलब कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पे और इस्तेमाल कीजिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। अच्छा मेरे पास आपके बहुत सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं और यहाँ पर किसी ने मुझे अहमद मुगल के गाने की फरमाइश कर दी। तो अहमद मुगल के गाने सिलेक्ट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि अहमद मुगल के गाने कौन से लगाने हैं प्रोग्राम में, इतने दुखी होते हैं। तो ये वाला गाना अहमद मुगल का हमने लिस्ट में लगा लिया है। हम एक स्वीट सी लड़की ने फरमाइश कर दी थी तो मैसेज आएगा तो उनको शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा लेकिन ये गाना उनको डेडिकेट करते हैं।

ओके जी, ऐसा कहते हैं कि वॾनि खे छा कजे बाबा, मूं त असांखे ॾियणो पवंदो हक़ीक़त आहे। वैसे पोइ वरी चवंदा बाबा नसीब अथसि नसीब अथसि, छॾे ॾे जाने। अब्दुल गफ़ार हमारे साथ, अब्दुल गफ़ार केसर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको, खुश आमदीद के साथ साथ। नदी लिखी थी, ओ हो कौन सी चैनल पर ये ड्रामा आता है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ बस हमने प्रोमो बना के रखा है अच्छा आदिल कहते हैं कहीं पर भी इंसान शादी करे इन दोनों के घर में नहीं करनी चाहिए। सही है भाई। ओके सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

अच्छा जिनकी शादी हो चुकी ना, ये गाना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश मत हो। ताजे गणते एक दफो धूल वधी गया ना, आने बस के हाने ता बस वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सही आ। अच्छा सुमाटू गोपां कहते हैं पांजा मारे पोई भी शाम में रखना है ने। हाँ सही दा प्यारा हो जो ना तो मारे नहीं जो। और दिया परी हमारे साथ है। दिया परी कहती अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं आपकी साइलेंट खामोशी को तोड़ मरोड़ के आ गई। साइलेंट लिसनर है, कहती है स्वागत नहीं करेंगी मेरा दिया परी, आपका ऐसे दिल से स्वागत कहा जाता है। और आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और कहते हैं हे असा तांखे बुधन आयो पर शामिल न थी ना आयो। सो तमाम जो मोहब्बत हुआ इन बाबा दिया परी, थैंक यू। और जी आदिल तमाम जवाब दिनो आए ओ हिडु वडु जवाब दिनो धवला डसी करे। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओके कहते हैं कि लड़का या लड़की की शख्सियत सबसे अहम ये है कि सामने वाला इंसान कैसा है, इज्जत करता है, समझदार है, दीन और इखलाक ठीक है, नाम मामू हो या पुप्पो फर्क नहीं पड़ता, और फैमिली का मिजाज और हाँ मिजाज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहते हैं कि मामू के घर पहले से जान पहचान है, रस्मों रिवाज सोच स्टेटस का अंदाजा है, रिश्तेदारी की वजह से रिश्ता निभाने का प्रेशर भी होता है, पुप्पो के घर नया खानदान वहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर उनके उसूल तुम्हारे घर से मिलते हैं तो कोई मसला नहीं। कहते हैं कि घर का नाम नहीं लोग देखो, जहाँ इज्जत दीन समझ और इखलाक बेहतर लगे वहीं रिश्ता करो, चाहे वो मामू हो या पोपो हो। सही है।

0: मिदड़ी ने कहा है मतलब पप्पो को कोई वोट नहीं दे रहा, अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा दिया पड़ी कहती है मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर रही मास्टर मंजूर का डेडिकेट अली मुर्तजा अंसारी। क्या बात है, अली मुर्तजा अंसारी नजर नहीं आ रहे, वैसे वो कहाँ गायब है।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर को।
0: एक बहुत अच्छा मास्टर मंजूर का गाना लगाएंगे आप दोनों के लिए, ठीक है।
1: मेरी आहों का तेरे दिल पे असर कोई नहीं।
0: वैसे दिया आप तो जानती हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बताइए जरा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस्तेमाल कर रही हैं या फिर अभी सोच रही हैं।

जी क्या बात है. अख्तियार सिंधी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. जान तालिब सोलंगी हमें सुन रहे हैं मोरो से. ओके जी, भाई जान को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. अख्तियार सिंधी आपने सलाम दिए हैं रिजवान साहब, सुमेरा बाची और रुखसार के नाम. अच्छा सादिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं.

जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइए. आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए या अभी तक नहीं. अगर अवेलेबल नहीं हुए तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें. कॉल करें या फिर मैसेज करें. उनको बताएं भाईजान हमारे एरिया में नहीं मिल रहे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि आप लगा सकें. आपके लिए भी आसानियां, आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी आसानियां हो जाएंगे. तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरती को जरा वेलकम करते जाइए. टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाया जाए, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: अगर खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन के बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं डिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक ऐं निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम. अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: जहां उम्मीद के दिए जलते
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी थी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

ओके जी, अब्रार के गाने की किसी ने फरमाइश करी तो ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे खास ही अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ ही साझा खालिद पेनर पर आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। गाना आपका ऑन द वे है, आप थोड़ा सब्र कीजिए। उसके अलावा मकसूद मल्हा हमारे साथ ही, आदाब अदा, वालेकुम अस्सलाम। और मंजूर नहीं बल्कि मास्टर मंजूर का गाना आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ है सिद्रा। अच्छा, हैप्पी है, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती आप छुट्टी वाले दिन आपका कैसा गुजरता है? छुट्टी वाला दिन मेरा इतना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैंने किया क्या और मैंने करना क्या था। तो मुझे लगता है कि बस पूछना ही नहीं चाहिए। मीरपुर खास अब्दुल्ला भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है। टॉपिक शादी मामों के घर करनी चाहिए और बाजी सॉन्ग सुनाओ तो मजा आ जाए। गाने आपको बिल्कुल सारे मजेदार सुनाए। उनके अलावा चाचा खाले तवां जो मैसेज बिल्कुल मुंह डिसी वर्त हुआ है। ये हमारे साथ ही नवाब शाह खान सूर्या बिरोही कहते, आज तवांजे प्रोग्राम में आया आई हूँ। इहो न सोच रहियो त डेली ईंदासीं, तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं, इहो ई घणो आहे। हा बिल्कुलु, इहो घणो आहे, मां बि सोचींदी आहियां। तव्हां ॿुधो था, इहो ई तव्हांजे मथां बाबा, मुंहिंजे मथां अहसान त तव्हां बर्दाश्त कयो था मूंखे, सही ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां गानो चयो आहे निघत नाज़ जो, ऐं ली निघत त मूं रखी कोन्हे का लिस्ट में। चलो निघत सुभाणे ॿुधी वठंदासीं, न त असां शाम वारे प्रोग्राम ॿुधी वठंदासीं। सो थैंक यू सो मच सूर्या बिरोही। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। इरम हमारे साथ है, मुझे प्यारी दिलबर दोस्त जानी, मैं तो शादी शुदा हूँ, अब मैं क्या ही जवाब दूँ? नहीं, आपको पता होगा कि आपने क्या जवाब देना है। आपको क्या लगता है कहाँ करनी चाहिए?

0: भई ही त इलाज करे पर तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो तव्हां सोणा थींदा तव्हांखे इलाज करण जी ज़रूरत न पवंदी अच्छा ये मौजूद ही वालेकुम अस्सलाम आप ही कैसी हो अपनों में अपनों ने ना हमें बहुत दर्द दिया है अपनों में शादी तो कभी नहीं करनी चाहिए आई एम सितारा सुल्तानपुर से आप हमें सुन रही हैं प्लीज बोले अहमद मुगल आप ही मुझे दुआ करें बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे मेरी प्यारी सितारा और आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा ये हमारे साथ है सज्जन माशी गोट जान मोहम्मद माशी मोरो का तमाम से जो प्रोग्राम बुधो पाया थैंक यू मकसूद कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता मकसूद ये पूछना पड़ेगा
1: उड़ते सुलाल कर ले
0: हाँ जी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए कामरान लगा रही हमारे साथ कहते हैं सिद्राबाद जी हमें सॉन्ग सुनाए पाकिस्तानी ड्रामे का यार तो यार होता है डेडिकेट कुर्बान अली मीर हसन लगा रही थैंक यू अच्छा भाई आपको गाना मैं सुनाऊंगी 5 बजे वाले प्रोग्राम में ठीक है आप लाजमी मुझे ज्वाइन कीजिएगा और इसके अलावा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके शो का इंतजार होता है और आपका शो बहुत बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच कामरान लगा रही भाई आपको वेलकम कहते हैं आप हमें मोरो से सुन रहे हैं मोरो में भाई आपके लिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप जाइए और परचेज कीजिएगा ठीक है अल्ताफ कोसम में सुन रहे हैं जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज ओल्डी गोल्डी गाना लगाइएगा और कहते हैं डेडिकेट यू एंड अजरा खोसो रिजवान साहब ओके और मोहम्मद शरीफ कुंभ हमारे साथ है मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श कुंभ मादली कहते हैं मामों के घर शादी करनी चाहिए भाई इतने मामों को वोट क्यों मिले हैं एक भी बेचारी पुप्पो को वोट नहीं मिला हाय ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कसम
2: करते करते मेरी उम्र बीत जाए
0: अजो नखा अलावा ही एस एस गुड मौजूद आए सलाम बाजी जुल्फकार अली खोड़ो हमारे साथ फ्रॉम आकिल कहते हैं बाजी सिदरा शो नाइस तवाजो सब का बेहतर रिश्तो चाचाणो आ चाचाणो घर अफजल आ जे मोहब्बत में मजो न आए त धारिया उन का बेहतर आए ओके ओके जुल्फकार भा थैंक यू तवा से गुड मौजूद आए
2: मेरी उम्र भी
0: अच्छा ये अल्ताफ खोसो जाग जानी चाचू हमारे साथ है वही मैसेज आपने दोबारा शेयर कर दिया उसके लिए थैंक यू और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ है थैंक यू सो मच अब्दुल्ला महर भाई जान और हमारे साथ है साइमा मीर कहती कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं बस उस एक इंसान की जरूरत होती है जिसे मोहब्बत हो अस्सलाम वालेकुम मक्खन जैसी आरजे क्या हाल है मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी मैसेज इतना था या फिर मुझे मिसिंग पार्ट मिला है

ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रहे हैं. वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अच्छा सैमा मीर कहती है वाह जी वाह सिद्रो क्या सिंधी गाना प्ले किया है, छुपा के रखना अपनी. वैसे कौन से वाले की बात कर रही हो. और कहती टॉपिक जिए बुआ हलड़े हिकड़ो वोट तो फाइनली बुआ के मिलियो. माशाल्लाह माशाल्लाह नजर न लगे. अच्छा ये हमारे साथ है साइमा बीर तमाजो मैसेज आ दिल तू चवे सिद्रा आई निदड़ी भी टॉपिक थी रोशनी विजन सलाम बीमार निदड़ी के बीमार न उदास निदड़ी के आई बिल्कुल निदा के चौथा बाबा तान टॉपिक जो जवाब दियो. अरीबा हमारे साथ है प्यारी आप ही जवाब है मामू का घर. मेरी इरम ने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया तो मैंने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया. अच्छा क्या बात है जबरदस्त.

ओके जी, गाना खत्म हो गया और नेक्स्ट गाना खुद ही चल गया। ये जो प्रोग्राम का ये गाना जो लगा है, ये प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है और इसी के साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। आपके इतने सारे फीडबैक्स अभी भी रहते हैं तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमें मैसेजेस करते हैं और आप टाइम निकाल कर हमारा शो भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं और हर तरह से आपकी खूबसूरती को बहाल करते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा।

ओके जी दिया पर ये कहती है फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ बाकी मैं नेचुरल ब्यूटीफुल हूँ, खूबसूरती को भी जेलसी होती है मुझसे. क्या बात है. यदि अली मुर्तजा मसरूफ है पता नहीं कहाँ, मुझे यहीं पर नजर आता है और कहीं नहीं नजर आता. सच्ची बताए एनो मसरूफ मानू. अच्छा किशोर भाई कहते अदा अगर मुझे को कमेंट रीड न था थियन अल्लाह पो फील थी दो मुँह कुछ गलत चाहिए हुआ पो मुझे कमेंट न तवा जो कमेंट तो मुखे मिलियो कोने को जेके मिलिया तो आओ शामिल करे वरता अथस. नाराज कीजी का गाल कोने का शायद तवा जो कमेंट हेड़े उड़े थी वया हुंदा मां दिसनिया ते ता खबर आ मां पढ़ी वठंदी आ. नाराज न थियो बाबा ये पाण में ते चार पंज सिर आयो ये भी नाराज थींदास त कम की हलंदो. ओके जी आमिर खान महेश्वर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम कहा जाता है और नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको. दर्दे दिल कहती है चंदा तुम्हारी दोस्त के साथ ये सीन है आगे कहीं अल्लाह ना करे. और कहती मीरपुर खास पर सही नहीं चल रहा आपका शो, आवाज कम आ रही. मीरपुर खास वालों सही चलाया करो प्रोग्राम. उनका अलावा प्रीतो भाई हाँ नहीं कर रही ना वो बहुत जिद्दी है. अच्छा स्वीटी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. चाचा खालिद कहती आज का शो बहुत अच्छा था. थैंक यू चाचा. सादिया बहुत शुक्रिया आपका. सुमाटो गोपांग आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. मिदड़ी कहती पप्पो को बस एक ही वोट मिला है. हाँ ना अब आप देख

आबाद रहे और हमारे साथ रहे। अच्छा मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, थैंक यू। न मुखे लगे न थू था नाराज आए पर मैं चाहिए थी तमा नाराज थो भी न बस तुम वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा रहो सोना सोना थींदा रहो। सो बिल्कुल इते ही तमा खा इजाजत वठूं था वरी इनसे तमा से मुलाकात मुझी थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो मान जो ओ हेडो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी हुजे त माजरत कयूं था जिनो फीडबैक रेजी वयो आ गाना रेजी वया सबनी का माजरत कयूं था। सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे
3: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद वापस ॾे रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾे रवानगीअ खां पहिरीं वक़्त सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआहिदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। SPR मूजिब दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं घरू मोहसिन नकवी
4: जंग बदरा गालिन जरी हक हासिल करण चाहन
3: के भेटा पेश। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुशाई मढ़ जा जुज़ा वरता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़ जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जिबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे। उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 ॿार फोत, 7 बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं 3 सालनि जी गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया। गुलज़ार कुरेशी दिलावर महानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालत ख़राब थी पई। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया।

0: में टे बार बि फोत थिया आहिनि। पंजाब जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि, अंडर पासिस बि बरसाती पाणीअ सां भरिजी विया। शहर जे हेठां वारनि इलाइक़नि में गोॾे जेॾो पाणी बीठल। सिंध समेत समूरे मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स जा मसला हल न थियण ते सीएम हाउस ॾांहुं मार्च करण जो ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो चवण आहे त हड़ताल सबब थींदड़ नुक़सान जी ज़िमेवार वफ़ाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं। ॻाल्हियुनि जा दर बंदि नाहिनि कया, मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो। सिंधु दरिया में चाहिण बावजूद सूबे में पाणीअ जी खोट बरक़रार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। शादात कोर्ट में सैफला मंगसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा राइट माइनर जे आबादगारनि जो सड़ियल बेजारो खणी एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान जे जमाली रोड वारी पुल ते धरणो, फसल पचाइण लाइ पाणी ॾियण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। 1.5-4-6-9-12 inch में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान। ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
6: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8151
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

थियण बाद इलाइक़े में खौफ़ जी लहर छायल एड्स में मुबतला ॿिनि ॿारनि जे फोत थियण जी बि तसदीक। सिहत खातो मुतासिर माण्हुनि खे आगाही ॾियण बाद एड्स जा केस लिकाइण लॻो। ॻोठ रहमो किरियो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लॻायल कैंप में एड्स जे मरीज़नि जो इंकशाफ़ थियो आहे। ॻोठाणनि मूजिबि एड्स में वरितल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाजूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयारु नाहे। ॻोठ 5000 आबादीअ ते ॿधल आहे। रुॻो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। उबती ॻणप कंदड़नि जी ॻणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे तालुक खे केर बि ख़तमु नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमिल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। ब भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो 6 सीटूं घुर्बल आहिनि। जेके बि खटे वठंदासीं। पीपल्स पार्टी जितां हाराईंदी धांधली जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। आज़ाद कश्मीर जे मसइलनि खे हुकूमत ठाहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾे रवानगी खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया। शहबाज़ शरीफ़ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल ट्रिप मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआहिदे खे मुकमिल बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो के पी के में ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी लेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। आई एस पी आर मूजिबि दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इलाइक़े ते इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। शहबाज शरीफ़ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे। आपना हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ क़बर कुशाई मढ़ जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे। उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण बाद 3 बार फोत 7 बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरनि जे ज़ैन कुरेशी ऐं 3 सालनि जो गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया। गुलज़ार कुरेशी, दिलावर, मानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी आहे। मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालति ख़राब थी। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया, जंहिं में 3 ॿार बि फोत थिया आहिनि। पंजाब जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि। अंडर पासिस बि बरसाती पाणीअ सां भरिजी विया। शहर जे हेठां वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जेॾो पाणी बीठल। सिंध समेत समूरे मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स जा मसलो हल न थियण ते सीएम हाउस ॾांहुं मार्च करण जो ऐलान। गुड ट्रांसपोर्टर जो चवणु आहे त हड़ताल सबबि थींदड़ नुक़सान जे ज़िमेवार वफ़ाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं। ॻाल्हियुनि जा दर बंदि नाहिनि कया। मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो। सिंधु दरिया में चाढ़ बावजूदि सूबे में पाणीअ जी खोट बरक़रार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादकारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। शादात कोट में सैफुल्ला मंगसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा खार राइट माइनर जे आबादकारनि जो सड़ियल बीजारो खणी एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान जे जमाली

0: वारी पुल ते धरणो, फसल बचाइण लाइ पाणी ॾियण जो मुतालबो। मोरो भरसां नौजवान औरत मुबैना तौर ते गोलियूं हणी क़त्ल, ॻोठ जंगू खान लगारीअ में 18 सालनि जी रियाना लगारीअ खे मुबैना तौर अगवाबाद वापसीअ ते क़त्ल कयो वियो। मक़तूल औरत जे वालिद जमाल लगारी चयो आहे त कुझु वक़्तु पहिरियां वसीम धीअ खे अगवा करे वियो हो। पाक किताब ते धीअ वापसि ॾिनी वई। अॼु सुबुह वसीम अगड़ो हथियारबंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदरि दाख़िल थी धीअ खे पिस्टल जा फायर करे क़त्ल कयो आहे। पुलिस इतलाउ बावजूद कार्रवाई नाहे कई, इंसाफ़ कयो वञे। मेहर मां मुबैन तौर अगवा ॼाणायल ॿ भेनर दौड़ जी अदालत में पेश। अदालत ॿिन्ही छोकिरियुनि जो बयान रिकॉर्ड करण बाद माइट लियाकत जतोई लियाकत बिरोई हवाले करे छॾियो। ॿिन्ही भेनरनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त पीउ जे ज़ुल्मनि खां तंग थी माइटनि वटि पनाह वरिती आहे, तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। हैदराबाद जे फुलेली चौक ते मदीना कॉलोनी वासी औरतनि जो बिजलीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाज। रुकावटूं रखी रोड खे बंदि करे छॾियो। औरतनि मूजिबि हफ़्ते खां ख़राब थियल ट्रांसफार्मर तब्दील न पियो कयो वञे। बिजली न हुजण सबबि सख़्त परेशान आहियूं, ट्रांसफार्मर तब्दील करे बिजली बहाल कई वञे। तलहार वेझो ॻोठ में पाणी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ॻोठ करम खान दलवाणीअ में 2 महीननि खां वाटर सप्लाई बंदि हुजण ख़िलाफ़ रहवासी रोडनि ते निकिरी आया। ॻोठाणनि औरतनि समेत हैदराबाद रोड ते टायर साड़े धरणो हयो। रहवासियुनि जो चवण आहे त 2 महीननि खां ॻोठ करम खान दलवाणीअ में वाटर सप्लाई जो पाणी बंदि आहे। फौजपुर वेझो पीएस फीडर खे लॻल घारो बंदि न थियो। समय एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि ॻोठ मोहम्मद अली ओगाई वटां बीएस फीडर खे 100 फुट जो घारो पियो। पाणी इलाइक़े जे केतिरनि ई ॻोठनि में दाख़िल थियण लॻो। रहवासी परेशानियुनि खे जो शिकार आहिनि। आपाशी खाते पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03008 5569।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 03013992836।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: It's 4:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 शाम 5 बजे तक मरीज

0: नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: मिलियन में रेशो पे बिल बसों निकता
4: इलाज वगैरह को
5: जिन्हें

0: ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
1: उगती गणप कदड़ी गणप पान पी सीधा थी वा पीपल्स पार्टी ऑफ पाक में सागे पगार से कम कंदी रही अवाम पाकिस्तान जो मालिक है। कश्मीर ए पाकिस्तान के ताल्लुक के केर भी खत्म न तो कर सके। पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मल ना है। कश्मीर में इंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी। आजाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनाउल्लाह आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है। ब भाग्य टे की अक्सरियत लाए रुगो छह सीटू घुर्बल हैं जेके भी खटे वेठासी। पीपल्स पार्टी जिता हाराइंदी धांधली जो इल्जाम लगाई है। कश्मीर जहा मसला हल कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करने बाद डेह पहुंची वो। वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो हो। वज़ीर आज़म ने रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी और रियासुल जन्ना में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल से हाजिरी भरी ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल टि मुल्की दिफाई माहदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दई छो। मक्का दिफाई माहदे के मुमकिन बनाने से वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल की सारा। लाल भुट्टो ज़रदारी चयो त दिफाई माहदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही अपना हुरमुज खुलंदो। ईरानी पासदार इनकलाब है त अपना हुरमुज असां लाइ रुगो आपी रस्तो न पर ताकत ऐं कुवत जो ज़रियो आहे। अपना हुरमुज ते उमान सां ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में आहिनि। मुदाख़लत जा नतीजा ख़राब निकरंदा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त ग़ैर मुल्की फ़ौज खे ख़िते मां निकिरी वञणु घुर्जे। ख़िते जा मुल्क सरकार वधाए सलामती यकीनी बणाए सघनि था।

पाकिस्तान में हलंदड़ हफ्ते महंगाई शरह में 9 सैकड़ो का वधीक वाध रिकॉर्ड। पचाइण वारो तेल के खीर जो वॾो तादाद गैर मयारी हुअण जी बि तस्दीक। मनसूबाबंदी वारे वज़ारत पारां जारी कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त मुल्क मां पचाइण वारे तेल गिह ऐं खीर जा 491 नमूना गॾु करे चेक कया विया आहिनि, जिन मां 174 नमूना घुर्बल मयार ते पूरा नाहे लथा। गिह जी 204 नमूननि मां 98 मयार ते पूरा न लथा। कुकिंग ऑयल जा 40, खीर जा 26 ऐं मिल्क पाउडर जा 18 नमूना गैर मयारी निकिता। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जी मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुशाई वर जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़जक मां मुतमिन आहियूं, पोस्टमार्टम जे अमल मां बि मुतमिन आहियां। वकील जिब्रान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे। खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 बार

0: को सत बेहोश गुलजार कुरैशी के घर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब दह भाती बेहोश थे इलाज दौरान पंज वरियन जो जैन कुरैशी और टिन साल गुलजैब निगरी मुस्कान फोत थे गुलजार कुरैशी दिलावर महानूर बेन जो शिकारपुर में इलाज जारी मुतासर गुलजार कुरैशी मूजिब घर में पचायल छोला चावर वाली बिरयानी खाने बाद घर भातियों की हालत खराब थी उल्टियों मोशन देने बाद बेहोश थे जैमें टे बार भी फोत थे पंजाब के शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पानी हेठ अंडर पासिस भी बरसाती पानी से भरजी व्या शहर के हेठाई वारन इलाकन में भी गोडे जेदो पानी बिठल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 0242460100।

कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 41 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: मिट्टी जा रंग रौनकू अंसरखेजी असाजे हारिय साईं ताहन आबाद हाने इन जो अन्याप वधिक बान वधाइन लाए तवासा गदाई सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंजो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याप शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेट। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: कमेटी सिंधी वहदत ऐं ख़ुदमुख़्तारी जे तहफ़ुज़ लाइ मज़ामत जो ऐलान कंदे 22 अगस्त ते हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। जामशोरे में सिंध एक्शन कमेटी जे इजलास सिंध जे वहदत पाणी मादनियात ज़मीननि ऐं माली ख़ुदमुख़्तारी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर कयो वियो। मनसूबनि बाबति घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जे बयाननि जी मुज़म्मत 28 आईनी तरमीम सिंध जी वहदत वसीलनि ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तारी लाइ ख़तरो करार। इम्कानी तरमीम खे फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो अॻवाननि चयो आहे त सिंध चक और सिंधियुनि जो तारीख़ी वतन आहे जंहिंजी वहदत ते को बि वार क़बूल न कयो वेंदो। सिंध असेंबली 9 सूबनि ख़िलाफ़ 20 ठहराउ मंज़ूर करे सिंध एक्शन कमेटी 26 ऐं 27 आईनी तरमीम खे ख़तमु करण ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण जो बि मुतालबो कयो वियो।

हज़रत आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद देह पहुंची वो वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा किया हो। वज़ीर आज़म देह रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी और रियाज़ुल जन्ना में नफल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिरी भरे ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की विच में थियल टे मुल्की दिफाई मुआहदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दे छो। पक्का दिफाई मुआहदे के मुमकिन बनाने से वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की सराह। लाल भुट्टो ज़रदारी दिफाई मुआहदो पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही अपना हुर्मुज़ खुलंद। ईरानी पासा इनकलाब है अपना हुर्मुज़ से लाए रुगो आबी रस्तों न पर ताकत कुवत जो जरियो है। अपना हुर्मुज़ से उमान से गालियों आखिरी मरहले में आन मदाखला जहाँ नतीजा खराब निकरंदा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है गैर मुल्की फौज के खत्े में निकरी वजन घुर्जे खत्े जहा मुल्क सहकार बधाए सलामती यकीनी बनाए सकन था।

0: कराची जे नौजवान मीर रज़ा अली जी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिटकाईंदड़ इंकशाफ। मीर रज़ा अली जी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जे थारियल 14 सवालनि जा जवाब मिली विया आहिनि। मीर रज़ा जी मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबर कुशाई करे मरे जा जुज़ा वरिता विया। जुज़नि खे हतमी जाइज़े लाइ लेबॉरेटरी मोकिलियो वियो आहे। कानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि टे ॿार फोत, सत बेहोश। गुलज़ार कुरैशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वॾनि जो ज़ैन कुरैशी ऐं 3 सालनि जो गुलज़ैब ऐं निंगरी मुस्कान फोत थिया। गुलज़ार कुरैशी, दिलावर मानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलज़ार कुरैशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद गर्भवतियुनि जी हालत ख़राब थी। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया, जंहिं में 3 ॿार बि फोत थिया आहिनि। हैदराबाद में क़ौमी अवामी तहरीक पारां यासरतीफ अली चोर जी एफ आई ए में तलबी ख़िलाफ़ एहतजाज। कारकुननि रैली कढी प्रेस क्लब वारो एहतजाज कयो। अॻवाननि चयो त सिंध टोड़नि जी साज़िशनि ख़िलाफ़ अवाम खे बेदार करण जे ॾोह में अयाज़ लतीफ़ अली खे नोटिस मोकिलियो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।

0: मीर रज़ा खे गोली पुठियां लॻल आहे, जिस्म ते तशद्दुद जा बि निशान मौजूदु आहिनि। कराची जे नौजवान मीर रज़ा अली जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकिशाफ़। मीर रज़ा अली जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जी उथारियल 14 सवालनि जा जवाब मिली विया आहिनि। मीर रज़ा जी मौत जो कारण मालूम करण लाइ क़बर कुशाई करे मर जा जुज़ा वरिता विया हुआ। जुज़नि खे हतमी जाइज़े लाइ लेबॉरेटरी मोकिलियो वियो आहे।
1: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
0: उपती गणप कंदड़न जी गणप आए पान भी सीधा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफाक में सागी पघार ते कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक है, कश्मीर ए पाकिस्तान के तालुक के केर भी खत्म नथो करे सके। पाकिस्तान कश्मीर का सवाए मुकम्मल ना है। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला जो चवण हो तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल करे वरती है। ब भांगे टे की अक्सरियत लाए रुगो 6 सीटू घुर्बल हैं, जेके बे खटी वठंदासी। पीपुल्स पार्टी जिता हाराइंदी दांधली जो इल्ज़ाम लगाइंदी है, कश्मीर जा मसला हल कंदासी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकम्मल करण बाद देह पहुंची वो। वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो हो। वज़ीर आज़म देह रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबवी में भी हाजिरी भरी ए रियाज़ुल जना में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल से हाजिरी भरे ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: मीर रज़ा अलीअ खे गोली पुठियां लॻल आहे, जिस्म ते तशद्दुद जा निशान बि मौजूद आहिनि। कराची जे नौजवान मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिरकाईंदड़नि खे साफ़ साम्हूं अची विया। मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जी उथारियल 14 सवालनि जा जवाब मिली विया आहिनि। मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ क़बर कुशाई करे मर जा जुज़ा वरिता विया हुआ। जुज़नि खे हतमी जाइज़े लाइ लेबॉरेटरी मोकिलियो वियो आहे।
1: गिनती शुरू हो चुकी है, टिक टॉक,
2: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
0: उपती गणप कंदड़न जी गणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जी तालुक खे केर बि ख़तमु नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्लाह जो चवणु हो त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिलु करे वरिती आहे। ॿ भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुॻो 6 सीटूं घुरबल आहिनि, जेके बि खटी वठंदासीं। पीपुल्स पार्टी जितां हाराईंदी आहे दांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। कश्मीर जा मसला हल कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद ॾेह वापसि पहुची वियो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾेह रवानगीअ खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवीअ में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल बि पढ़िया। शहबाज़ शरीफ़ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिलु कई। पीपी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफ़ाई मुआदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी वाखाण। बिलावल भुट्टो चयो त दिफ़ाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जी महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। ओमान सां मुआदे जे वेझो पहुची विया आहियूं। मुआदे जो मतिलबु आबनाए हुरमज़ जो खुलणु न हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची चयो आहे त आबनाए हुरमज़ जो खुलणु न हूंदो। ईरानी परॾेही

0: दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिया विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकरम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकरम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थुराइती आहे, दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि 12 रबीउल अव्वल जी तयारियुनि बाबति मज़हबी आलमनि जो अहम इजलास। वॾे वज़ीर पारां 12 रबीउल अव्वल जे मौक़े ते सूबे में सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम यकीनी बणाइण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त मज़हबी हम आहंगीअ में आलमनि जो किरदारु साराह जोॻो आहे। रेलनि बाबति मसला जल्द हल कया वञनि। सिंध एक्शन कमेटी सिंध जी वहदत ऐं ख़ुदमुख़्तियारी जे तहफ़ लाइ मज़ाहमत जो ऐलान कंदे 22 अगस्त ते हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। जामशोरे में सिंध एक्शन कमेटी जे इजलास, सिंध जी वहदत, पाणी, मैदनियात, ज़मीन ऐं माली ख़ुदमुख़्तियारी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार कयो वियो। नवनि सूबनि बाबति घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जे बयाननि जी बि मज़म्मत। 28 आइनी तरमीम सिंध जी वहदत, वसीलनि ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी लाइ ख़तरो करार। इम्कानी तरमीम खे फौरी तौर ते वापसि वठण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त सिंध 6 करोड़ सिंधियुनि जो तारीख़ी वतन आहे, जंहिंजी वहदत ते को बि वार क़बूल न कयो वेंदो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ख़िलाफ़ु ॿीहर ठहराउ मंज़ूर करे सिंध एक्शन कमेटीअ पारां 26 ऐं 27 आइनी तरमीमनि खे ख़तमु करण ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण जो बि मुतालबो कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे तो। राब्ते लाइ 0301-96-8851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के गोली पुठियां लगन जिस्म ते तशद्दुद जे निशानन जो इंकशाफ कबरकुशाई का पोए शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामू अची वया। शुरुआती रिपोर्ट में मीर रजा जो पसराटियों बे भगल होने की तस्दीक जांच की रोशनी जो दायरो वधाने जो इम्कान जरियन जो चवण है मीर रजा की कबरकुशाई दौरान 17 सैंपल्स महफूज किया वह हुआ। मेडिकल बोर्ड जा मेंबर मजमू तौर से 19 सैंपल्स की जांच कंदा। केमिकल एग्जामिन डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट का 4 दिन अंदर अचान इम्कान। वकील जिब्रान नासिर जो चवण है पुलिस मीर रजा के वारसन के हिरासा कर रही है। यह एक नौजवान जो कत्ल है पुलिस जांच नथी चाहे।

0: सालाने इनकलाब चयो आहे त अमरीका पारां समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ई अबनाह हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारिजी विया। अंगू में फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिबि अंगू में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकरम शहीद थी वियो। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा इकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जो कर्ज़ी आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-324-372
4: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हमने सिर्फ पोस्टमार्टम से पहले उनकी जो हालत देखी थी, हम उस दिन से कह रहे थे कि ये इनका कत्ल किया गया है और बहुत तशद्दुद से बात करके इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है। हमने जिस हालत में बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, इसको प्लीज इन्वेस्टिगेट कर लें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि मर्डर है, प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता।
4: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के गोली पुठियां लगण ए जिस्म से तशद्दुद के निशानन जो इंकशाफ। कबर कुशाई का पोए शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामूं अची वया। शुरुआती रिपोर्ट में मीर रजा जो पासराठियों भी भगल होने की तस्दीक, जांच जो दायरो वधायण जो इम्कान। जरियन जो चवण है त मीर रजा की कबर कुशाई दौरान 17 सैंपल्स महफूज किया वया हुआ। मेडिकल बोर्ड जा मेंबर मजमूई तौर से 19 सैंपल्स की जांच कंदा। केमिकल एग्जामिन डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट का 4 दिन अंदर अचण जो इम्कान। वकील जिब्रान नासिर चवा है त पुलिस मीर रजा के वारसन के हिरासा कर रही है। यह एक नौजवान जो कत्ल है, पुलिस जांच नथी चाहे।